फुङ्गहाम दौक्ते बुकसङ हानु हाइलामसुको आकाश भने आगरतला एफएम उचेन्त सार्सा पोइन्ट टक मेगाहर्ट्स दग ते बुकसङ हानु हाइ खाखलायो नरक ओ वाते पाम्ते जरा फनो कहाम हामियाने बिसिन्ति फनो खनाइ तङ नहने यान अजराउ फारिकै हानु हाइ चिन चिनि पान्दन तिनी जरानि बगे चेङना थांलायन फुङजराउ फारिकै चिन लगमुर सामु खाना मानि सिकां तिनी कक बथमान खनाय नालायन तिनी कायसा नांकक मानि साल तंग आबंखा हायुं सिक्ला रग्न जुदा जुदा सामुं हुमुंग गोरों ओंनानि सिचारिमुं साल एखबा वर्ल्ड युथ स्किल्स डे हिंकाय चिं सिक्ला रग्न तुयैन कक सालायनाय सिक्ला रग ताबोकनि अकताल जुग बाय गदाली तंगमानि जराव बाहायके जुदा जुदा सामु हुमुं नुति कुबुक अंनानि चिनी कक बथमांखा बारसाके एखबा बारासाके कुबुक सिक्ला सिक्ला र कुबुक अंथान अंनानि लामाव ते कायसा देश न कराक सनाम थानिव सिक्ला रक्तमु सामु हमु ते बो रंखांके आबो कायसा देश नि बागी बो कुचुको काथानी वो लाम ग्राक ते कलक सनाम गुरुं अंगै तंगमानी एकेबा स्किल्ड अंगै तंगमानी बिनि फान न जुदा रंगियानि सिलाय सिरंगियानि सिलाय थिनां आ बरकनि बागिन जे बरकनि थानिव' रोंमुं तंग' ते आ रोंमुं बायखे गोताल गोताल वानसुकमुं थेपावैनाय सामुं हुमुं ख्लायनानि रोंग' अबु खरक्सा रबार्ट ग्रीन हिनै बिनि ककथायो साजाग तंग' फारिके ते लेरियावै जों लमुर सामुं खाना नाफायसिंग' थांलायनो जराव'

0: Rok matong kobo mani mano piaba. Jung bai kiawa hai borrokno, shikla rokno, shia rokno, shirinani. In kiawbuno, padi jung hain hai kanalayana. Hello?
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं
0: हेलो
2: यानी मोबाइल
0: हेलो
2: कौन खाना बात
0: ताबुक खाना का ऐसा नहीं था का
2: आनी मुंग आंकल अंग्रेज में नहीं
0: आंकल ओ
2: नाम वक्ता करना खाना बनाना है करना आगे स्पेलिंग बाय ना वो फ़ोन कहाँ
0: फ़ोन
2: माने थोगो
0: नंबर तो खराज शिक्ला नंग नले
2: हाँ
0: नंबर तो ताबुक वो खराज शिक्ला नंग नले है दीबा
2: इन शिक्ला नो बयान बोया छाते जब बताएगा
0: ऐ इनके ताबुक अब नो नंग बाय इनके बेलाई के नो टॉपिक को थोकी तंग हता
2: आह
0: दस हागरा दिन
2: अने अब ये ताबुक शिक्ला पर बुरी जोनी थी
0: ऐ
2: Engke hai bano to to awut ni borongo to subana ni bagi klaimani ya to kan sigango
0: obo to e obo to sama ka do obo kha obo kai skill klai obo skill klai obo ke chuwa so klaimani do skill ng kha tabok je sa samung mu mechanic nani phanon di tabok nu thai chingori tak nani phanon di he diba risum nani engke aburo kaisa surungi narak nani ka ba computer ni phano hindi computer surungi narak nani ge surungi narak kan ka je pro samung na ga pro rgoi manani he diba e abuno si skill hinu do ge nengle musa sa ma hai surung narak ma rak ta ratong
2: surungi narak mani ge sa mane narak jak tongo tini thak ham mi ba ge khlai jak abo kobang mana tongo asa sana thanga ge abo bang thang ge na बुझना सीधे बयास कहना
0: दो दो बोले हम बाइंग का फोन का हम
2: दाग
0: नोगे फाइरी चंग है ना है तेरे खाना लाया ना चंग चिनी कागो तो तिनी कलाई शानो इनका पूरी लवा अंशंग मनी तोंगो तिनी निजरा वो रोंडी जत्तनी थानी ना जत्त चिकला रंग थानी ना कैशा कबाग मानी बिचिंगो कैशा तमो स्किल तोंग Padi kanalena hai no? Hello? Hello?

0: आओ किसा ना सिंगरारी चीनी कक तू रो जरा जरा वो जंग जालो जंग जाल रक फायो फारी हाई ना हाई तेसा चाहिए तक नहीं हेलो
1: हेलो
0: ई फुंका हम लाम सगा
1: बाल फुंका हम दलाई दलाई फुंका हम

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: শরত কুমারী চৌধুরানীর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বাস্তববোধ, সংযত ভাষা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ সচেতনতা। তিনি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, পারিবারিক মূল্যবোধ, নারী জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানুষের মনস্তত্ত্বকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার লেখার কৃত্রিম নাটকীয়তার পরিবর্তে জীবনের সহজ সরল সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। তাই আজও পাঠকদের তার লেখা পড়ে মন ভরে যায়।

हमके फाइदे हजारवा एसएमएस नाइने सबो तामसी हरकासी हनांका अनिमुंग स्मृति देवबर्मा अनिपारा मालिया मोरा पुंगा हमबाय रचापुंगनि ककथाई फेसबुक थंते थंते रचापनायनि मुंग बाय वाकिति देवबर्मा तै बाय अभिजित देवबर्मा तै आमा द्रुपति देवबर्मानि बागै और रचापमुंग बिनि बागै तै अनि बाय वाकिति देवबर्मानि बागै हामबाय जतनि बागै हामबाय हेंखाय बेलायनो हामबाय हेंखे बुकुक स्मृति रचापंखनाना हिने कय हरका फेसबुक थंते थंते हिने रचाप मुंग बुकुक वाकिति देवबर्मा बाय रचाप चाग रचाप मुंग के फादि खनालायने बिनि खना तक सामानि हर रचाप मुंग सारा जा पॉइंट ऑफ मेगा हर्ट्ज एफएम उजतो हाय केन रबो खनाय तंग दि लगि तंग दि पांदा पाय शाक जरा दिबनि दामनि तमय सति थामचि जरा नरनि कचार अंग तंग नाय

के अजरा वचन नायलाय फिने एसएमएस साबोता मसि हरजाख आनायने फुंकाहाम बुको कांखवाय चंपावरनी अजित देवबर्मा कयहर हानो विश्वनाथ देवबर्मा नि रचा मुंगतांग शाखनारेदि रचा मुंगनि ककथाय हंके किसान आशिगै मखांग खलबै तामसुक नायथक्ति और रचा मुंगनो खनारेदि हामबाय हंके बलाय हामबाय ताको गजि नंगे खनालायने अजरा ओनिनि खना तंजा मानि रचा मुंगनो प्लेखानाबो खाखथांगै दङ खाखलायनां एनजेखेनो खनाय दंदि लगि दंदि दे जतखनाय दंनाय दाखौ बुखुमारि गेजेंसं नरखौ खनायदि अखनाथ रोजाबमोन

नाइते नाइते पाइथागोर जरा फायसबायका आबोनि बागे गोबां कुक रोजाबुं हाथाय अ पाइथागोर जों रोजाबुं खाना लायनाय अ रोजाबुं खाना लायनो जों चिनि दिनैनि खानि रोजाबुं बान्दानाव फायदे लायनाय ओंखाय साना मुसुंग अ जरा वा एस एम एस ड्र हरजा गोबां मन दङ आं एस एम एस ड्र नायखा फियाबा जरानि फेरबाय रोजाबुं खानारि मानलिया ओंखाय अ जरा वा एस एम एस ड्र हनाय रंका ताकु सपन ताकु बिमल ताकु ब्रिजेस बुखुक आरती सबिता तापसी ते बुखुक देवी ते ताकु अजित नरकनि रोजाबुं आं खानारि मानग्लाखा तां हिंखे जरा क्रिखा नरकनि स्लाइ सिगाङ जराव दाबो एस एम एस ड्र हरजाक दङ ताकु सुनील ओंखाय बिनि खाना थकजाक मानि रोजाबुं खाना लायन जों जिनि दिनैनि पान्दानाव मा फारिलायसिनाय ओंखाय नरकनो आं सानाय हायनावहाय ते गुबुननि सालावहाय एखे बा नरक नरकनि हामजाक मा जिनि खातुमा पान्दाव कक दुख दि ग्रों फिर दि रोजाबुं खाना बागै ओंखाय अजराव तां खानानि मानलिया जरानि जरा क्रिनि फेर

0: उडे बागे गोर आरी जोंरी
1: चलाई फासिनि सिंग मलाय क्रिनो बयार नंदे तांगना तो
0: तामा हाय बरी हाय बरी सिंदा लायो दे दोसे
2: प्लीज प्लीज आनो हाय तागले दे एटलीस्ट तिनी जरते आनो एकदम आनो बो खाइले जे आंखिनि नु मानियो
0: आरे सिंग मो नंग यानो आगे सिंग हो कोलेज ऑफ फाइस किसी किसी नंगने दे
1: इने
0: नेबो सिंग लायो नि
2: नो आनो या कलिया नो
1: लेजेंड्स
2: तुम सीरत
0: महान बया नुनु लखा
2: निकाल का
0: आसन हका तैया करमया मनो ले ले ओ टेबडी
2: मान
0: ने बया ने
2: ए ते गा गा
0: कापसा प्लीज प्लीज ते कापसा
2: अच्छा नरो भाई सा एक्चुअली नरो भैया नरो ला तो नुवे एक्सपर्ट मन आनो काम नरो हाइट भाई बा आंग आंग दुखो मु फेबा जेत भाई जो आ
1: कोक ता सुत हिम ना

0: 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की, खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली, मेरा रानी दीवानी।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में

0: भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि भारत

0: सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
1: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है।
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
2: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
4: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा

0: है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहजारयानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।